हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण।

हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम।